0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेईन और नाजरीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नोयत के होंगे और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए, तबसरा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ चले, हम छोटी छोटी मालूमाती ख़बरें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और उसके बाद जब फिर हम नसर मलिक साहब की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो मालूमाती ख़बर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के डिनर में गए हुए थे होटल में, तो वहाँ पे एक शख्स ने उन पे गोली चलाने बल्कि गोली चलाई और वो एक जो है सिक्योरिटी गार्ड को लग गई है, लेकिन वो बच गया और फौरन ही जो है ना उस शख्स को पकड़ लिया गया। लेकिन एक शख्स का पिस्टल लेके इतने बड़े जो है एक पार्टी में आना जो है ये भी एक अजीब सी बात है। और चलिए अब देखते हैं कि

0: بعد کا اطلاع کر دیں گے جی سفارت خانہ غیر سیاسی جگہ ہے تو ہمیں وہاں بھی احتجاج کرنے نہیں جانا چاہیے.
1: تو اچھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ امبیسی سے کہتے جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان اندر جا کے ان سے بات کریں اور ایک یادداشت دیں تاکہ وہ حکومت کو وہ یادداشت پہنچا دیں؟
0: ویسی صاحب وہ یادداشت بھی دی گئی ہے اور وہ یادداشت بھی پوسٹ باکس میں ڈالی گئی ہے.
1: نہیں میں پوسٹ باکس کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ امبیسیڈر صاحب سے مل سکتے ہیں.
0: اس کے متعلق کہ میں مجھے معلومات نہیں ہے کہ انہوں نے, کیونکہ میں پی ٹی آئی نیٹ ورک ڈنمارک کی کوئی مجلس عاملہ کا نہیں ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی. اچھا. کہ اگر وہ سفیر محترم سے ملنا چاہے تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ آئیں, لیکن پھر بھی میں وہی بات کہتا ہوں باشی صاحب, آپ سے زیادہ بہتر کون نہیں جانتا ہوگا. دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی پہ مظاہرے ہوتے ہیں.
1: جی جی جی.
0: یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم جا کے ہیومن رائٹس کمیشن کے دفتر جا کے چپکے سے 5-10 بندے جائیں اور جا کر اپنی درخواست یا اپنی جو ہے کوئی یادداشت پیش کر رہے ہیں تو کام ہو گیا. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے اور یہ ایک بالکل عام چیز ہے. آپ سے زیادہ تو بہتر اسے کوئی جان ہی نہیں سکتا. آپ کی تو ساری عمر انسانی حقوق کے دفاع میں گزری ہے اور آپ کی کمی بھی مجھے وہاں بڑی فروق محسوس ہوئی کہ آپ وہاں نہیں ہیں. تو یہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا کہ آپ کا ایک نام ہے تو کم سے کم آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایک توجہ اپنے گھر کی طرف بھی کہ یہاں بھی کچھ ہو رہا ہے تو آپ اسے بھی رپورٹ کرتے ہیں.
1: جی جی درست کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ شوکت بھائی, آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ بتایا کہ امبیسی کے سامنے جو مظاہرہ ہوا اس کا کیا مقصد تھا اور اس کی وجہ سے کیا گیا. تو سامعین ناظرین اب ہم چلتے ہیں دوسری چھوٹی چھوٹی خبروں کی طرف. آپ کو جیسے پتہ ہے جو لوگ کوپن ہیگن اور ڈنمارک میں رہتے ہیں کہ ابھی موسم جو ہے کبھی دھوپ نکل آتی ہے پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے, ہوائیں چلتی ہیں. تو محکمہ موسمیات نے ابھی ایک پریس ریلیز بھیجی ہے کہ خواہ سورج نکل آتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ کپڑے جو ہے نا اتنے محفوظ پہنے کہ اب ان کو جو ہے وہ ٹھنڈ نہ لگ جائے. تو ہم بھی اپنے جو سامعین و ناظرین جو کوپن ہیگن اور ڈنمارک میں رہتے ہیں ان سے کہیں گے کہ دھوپ کو انجوائے ضرور کریں لیکن آپ کا جو لباس ہے ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو جو ہے ٹھنڈ وغیرہ نہ لگ جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خواہش یہی ہے کہ اب موسم ابھی مئی آنے والا ہے تو گرم موسم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم لوگوں کو انجوائے کرنا چاہیے. اچھا دوسری جو امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آئل کے پرائسز میں بہت اضافہ ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز کے سفر پہ بھی جو ہے وہ ان کی ٹکٹیں کم از 20% جو ہے وہ ان کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. تو یہ خدا کرے کہ وہ مڈل ایسٹ کا جو مسئلہ ہے وہ اور برا نہ ہو جائے کیونکہ اگر وہ آئل وہاں سے آنا بند ہو گیا تو ابھی دیکھیں یہاں پہ جو ہے پیٹرول بھی جو ہے وہ بجائے 12 کرونے کے ابھی 16 کرونے سے بھی اوپر ہو گیا ہے. تو یہ اس پہ ہم تھوڑی سی بعد میں بھی بات کریں گے مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایکسپینسو ہو رہی ہیں چیزیں تو اس پہ فیملیز کو بڑا جو ہے وہ پرابلم ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور جو چیز ہم اپنے سامعین کو جو ڈنمارک میں رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر سال محکمہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو ایک خط لکھتا ہے کہ آپ کو ٹیکس کے پیسے واپس آئیں گے یا آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آمدنی آپ کی کتنی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے جو محکمہ ٹیکس کو نہیں بتایا کہ ان کی آمدنی زیادہ تھی تو اس وجہ سے ان کے ٹیکس میں بھی فرق پڑے گا, تو وہ پلیز انٹرنیٹ پہ جا کے ٹیکس کے ویب سائٹ پہ وہاں پہ 20 مئی سے پہلے پہلے اگر آپ کچھ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ٹیکس جو ہے نا وہ صحیح ہوگا اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹیکس کے 2025 میں اگر آپ نے زیادہ ٹیکس دیا تو وہ پیسے واپس آئیں گے اور اگر آپ نے کم دیا تو آپ کو وہ پیسے دینے پڑیں گے. لیکن پلیز آپ انٹرنیٹ پہ جا کے جو ہے اس چیز کو چیک کر لیں کہ آپ کا جو پچھلے سال کا جو آپ نے ٹیکس وغیرہ دیا ہے وہ صحیح تھا یا نہیں تھا. اور آخر میں صحت کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو 50-60 سال کے زیادہ ہیں ان کی جو سنوائی ہے ان کی جو ہیئرنگ ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے آہستہ آہستہ. تو اس کے لیے اگر لوگوں نے ٹیسٹ کرایا ہو اور ان کے جو سنائی ان کو کم دیتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے اپنے کمون سے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کان کے لیے جو ہے وہ ایک ہیئرنگ اپارات کہتے ہیں اس کو, کان میں وہ لگا دیتے ہیں باہر یا اس کے اندر, اس سے آپ کو سنائی بہتر دیتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ بھی مختلف آپ فیس بک پہ بھی اخباروں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ مختلف کمپنیاں آپ کا ٹیسٹ بھی کر سکتی ہیں, بلکہ وہ لوگ جو زیادہ بزرگ ہیں جو چل پھر نہیں سکتے وہ آ کے گھر آ کے آپ کا ٹیسٹ کر کے پھر آپ کو وہ گائیڈنس دیں گے. لیکن یہ بہت ضروری ہے وہ لوگ جن کی سنائی ان کو جن کو کم دیتا ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں. اب ہم چلتے ہیں سیاسی خبروں کی طرف. تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر جناب نصر ملک صاحب موجود ہیں. نصر بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟
2: جی وعلیکم السلام, حال تو اچھا نہیں ہے, بس کچھ نزلہ زکام ہے, لیکن آپ کی باتیں سن کر کچھ تقویت حاصل ہوئی ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جن بزرگوں کی قوت سماعت جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے, ان کے لیے وہ اعلیٰ سماعت جو ہے
1: بالکل
2: وہ بعض جگہوں پر تو بالکل وہ مفت مہیا کر رہے ہیں.
1: جی بالکل,
2: یہ آپ کی عمر پر اور آپ کی آمدن پر منحصر ہے. لیکن ضروری بات جیسا کہ آپ نے کہا وہ یہی ہے کہ آپ اپنی بلدیہ سے یا ریجن کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے اپنے کان چیک کروائیں اور فوری طور پر یہ لگوا لیں تاکہ آپ روزمرہ کی زندگی میں بھرپور حصہ لے سکیں.
1: بالکل,
2: یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. اور دوسرا, آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ آپ سیاسی باتیں کریں گے, تو سیاسی بات تو آپ نے بڑی اچھی آج کر دی. یہ شوکت علی صاحب جو ہے انہوں نے بڑی اچھی خبر دی. کم از کم لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ صاحب اصول ہیں اور حق کی بات کرنے پر تیار رہتے ہیں. وہ کسی خوف سے بے خطر ہو کر آتش نمرود میں کودنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوا کہ کم از کم ڈنمارک میں رہتے ہوئے انہوں نے انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے اپنے وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے لوگوں کو, اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو جن کا نام گرامی سرکاری اخبارات میں, سرکاری ریڈیو میں, سرکاری نشریاتی اداروں میں لینا منع ہے.
1: جی بالکل,
2: کتنے ظلم کی بات ہے.
1: بالکل,
2: ان کی بہنیں جو ہیں اور ان سے وہ لوگ جن کو سپریم کورٹ نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان سے ملاقات کروائی جائے, مہینے میں 2-3 مرتبہ ملاقات کروائی جائے, ان کو وہاں نہیں بلایا جاتا. دوسری بات سب سے اہم جو ہے راشد صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز دیا ہے کہ یہ عالمی سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن اور اس کے لیے اتنے حفاظتی انتظامات کر رہا ہے. عمران خان کو جب سے وہ گرفتار ہیں عدالتوں تک میں پیش نہیں کیا جا رہا. بہانہ یہ بنایا جاتا ہے جی سیکورٹی کا معاملہ ہے. اگر تم اپنے ہاں ایک مبینہ ملزم کو جس پر ابھی الزام ثابت ہی نہیں ہوا عدالت ہی میں نہیں لا سکتے کہ اس کے لیے سیکورٹی کا مسئلہ ہے, تو پھر آپ پر کیسے اعتماد کیا جا سکے کہ آپ ایک بہترین حاکم ہیں اور آپ نے ملک میں ہر شہری کے لیے تحفظ مہیا کر رکھا ہے. یہ بات میری سمجھ میں آنے سے باہر ہے. اس وقت پاکستان کو جو کچھ شاباشی مل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اپنے دامن پر لگے یہ بدترین سیاہ دھبے دھونے چاہیے. ان کو جن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہیں ایسے لوگ, اور پھر ایسی ایسی سزائیں دیتے ہیں کہ خود جج جو ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ تمسخر کا نشانہ بن جاتی ہیں. سترہ سترہ سال قید کی سزا
1: اور چھوٹے جرائم پہ. جی جی بالکل,
2: چھوٹے چھوٹے جرائم پر. ایک ہیلمٹ نہیں, اگر آپ نے پہنا ہوا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو موٹر سائیکل کو تھانے میں لے جاؤ, وہاں 15,000 الگ دو اور ہیلمٹ کے پیسے جو ہیں وہ جرمانہ جو ہے وہ الگ دو. یہ لوگوں کے کپڑے اتارنے اور ان کو ذلیل کرنے, اور پھر ایسا مطالبہ کرنے والے پولیس کے سپاہی جو ہیں وہ شہریوں کو کھلے بندوں سر عام گریبان سے پکڑ کر چانٹے مارتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آپ نے جو آپ نے بات کی تھی کہ آخر سفارتخانے کے سامنے ہی ایسے مظاہرے کیوں دیے جائیں, باقی صاحب آپ بھی گواہ ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ 1972 سے لے کر آج تک کتنے سفارتخانے کے سامنے مظاہرے ہوئے.
1: جی
2: بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے کیا ہم نے مظاہرے نہیں کیے؟
1: جی جی
2: ہر روز ہوتے, ہر مہینے ایک بار دو بار چند آدمی ہوں, 10 آدمی ہوں, 20 آدمی ہوں, مظاہرے ہوتے تھے. اور ابھی کہانی میں جیسے شوکت صاحب نے مثال دی کہ صرف ریڈیبل پاکستان پاسپورٹ جاری کروانے کے لیے سینکڑوں لوگ جو تھے وہ نام نہاد تنظیموں کے تحت وہاں کھڑے ہو کر مظاہرے کر رہے ہیں اور اندر 14 اگست کا دن منایا جا رہا ہے. تو پاکستان امبیسی جو ہے اس کے سامنے اپنے حق کے لیے وطن عزیز میں جمہوریت کی بحالی, قیدیوں کی رہائی اور جو لازمی سمجھے جاتے ہیں ان پر مقدمہ چلانے کی آواز اٹھانے کے لیے ایسے مظاہرے کرنا, یہ خالص جمہوری حق ہے اور اسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں سمجھا جانا چاہیے. اور نہ ہی ایسے مظاہرے کرنے والوں کو یہ تانا دیا جائے کہ ان کی حب الوطنی پر شک کیا جائے. حب الوطنی ایک ایسی چیز ہے جو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دکھائی جا سکتی. یہ بات جو ہے یہ ہر ایک کو سمجھ لینی چاہیے. اور کون ہے جو جو جو وطن سے محبت نہیں کرتا؟ رسول کریم کی حدیث ہے تو وطن سے محبت کرنا نصف ایمان کے برابر ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ نے بڑا اچھا کیا شوکت صاحب کو تھوڑا سا آپ نے وقت دیا, انہوں نے کم از کم پاکستان میں آپ کی آواز سننے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ حساس ہیں, وہ قومی معاملات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک مظلوم قیدی کے حق کے لیے کس طرح آواز بلند کرتے ہیں. کیا بات ہے کہ ان کا نام تک نہیں سرکاری اداروں میں لیا جاتا,
1: ان کو خطاب کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بانی, ان کا نام نہیں بھی نہیں لیتے.
2: پی ٹی آئی کے بانی, یہ کیا حماقت
1: والی, بالکل حماقت, بالکل. اچھا ابھی ہم کیونکہ انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک چند, اس سے پہلے کہ ہم ڈینش نیوز کی طرف چلیں تو ایک چھوٹی چھوٹی جو خبریں اس پہ میں آپ کی رائے لوں گا, وہ یہ ہے کہ کوشش پاکستان یہ کر رہا ہے اور بڑی قابل فخر بات ہے کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ان کو بٹھا کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ان کی وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے اس پہ سیز فائر کرائی ہے, لیکن اس کو جو ہے آگے نہ بڑھنے دیا جائے تاکہ وہ پورا انٹرنیشنل پرابلم یہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن اب وہ لگتا یہ ہے کہ وہ کوشش زیادہ کامیاب اس لیے نہیں ہوئی کہ ایران نے جو مطالبات پیش کیے ہیں اور امریکہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو یہ امریکہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ فوراً چلے گئے پاکستان سے, اور جو امریکن ڈیلیگیشن آنا تھا اس کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے روک دیا ہے. تو یہ حالات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اگر بگڑ گئے تو اس سے تو پھر یہ جنگ پھر دوبارہ شروع ہو سکتی ہے مڈل ایسٹ میں؟
2: آپ نے بالکل بجا کہا, یہ خدشہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. اور ٹرمپ صاحب جو جو ابھی جیسا کہ آپ بتا رہے تھے ان کے ایک گیٹ ٹوگیدر پر گولی چلی ہے اور حملہ ہوا ہے,
1: جی
2: وہ بچ گئے ہیں.
1: جی جی
2: وہ کچھ بھی تماشا کر سکتے ہیں.
1: Exactly.
2: ان پر بالکل اعتماد نہیں کیا جا سکتا, وہ انتہائی جھوٹے آدمی ہیں. اور پاکستان کی طرف سے یہ جو ان دونوں کو امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کے لیے سہولت مہیا کی گئی تھی, اس کو جس طرح سے اغوا کرنے کی اور اس اغوا کے پیچھے جو عوامل کار فرما تھے ان کا سارا گند جو ہے وہ ایران پر ڈالنے کی جس طرح سے کوششیں کی جائی ہیں, یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ ایران ہی ہے मुझे ये बात नहीं मानता कि हम बात करेंगे। जैसा कि ट्रंप साहब ने कहा है कि हम 18 घंटे सफर करके वहां पर क्यों जाएं जबकि हमारे साथ पता ही नहीं है कि हमने क्या बात करनी है। अगर ईरान यही बात कहता कि मैं वहां पर क्यों जाऊं जब अमेरिका मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं
1: जी।
2: तो फिर क्या होता। यानी सदर ट्रंप साहब इस हद तक आगे जा चुके हैं अपने तकब्बुर में और अपनी अस्करी कुव्वत से, और इसके अलावा ईरान के इर्द गिर्द मुत्तहिद अरब रियासतें जो हैं वो और सऊदी अरब, इनकी पुष्टपनाही पर ट्रंप साहब इतने आगे जा चुके हैं कि उनको अब किसी चीज की परवाह नहीं है। उन्होंने आपने देखा है हर मुल्क को उन्होंने बंद कर रखा है
1: बिल्कुल।
2: और यही अमल सिर्फ हम रूस हर मुल्क को नहीं बल्कि उन्होंने ईरानी बंदरगाहों का भी मुआवजा कर रखा है
1: जी हाँ बिल्कुल।
2: यानी वहां पर ना कोई तेल लेने के लिए जा सकता है और ना ही ईरान के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त हो सकता है कि वो अपना तेल फरोख्त कर सके।
1: और तेल के अलावा खाने पीने की चीजें और चीजें जो आ रही हैं उनको भी उन्होंने रोक दिया है
2: बिल्कुल। ये नाकाबंदियां जो
1: जी हाँ बिल्कुल,
2: पाकिस्तान का करदार जो है उसको जिस तरह से और क्यों सराहा जा रहा है इसकी भी कई वजूहत है। लेकिन
1: कुछ लोग तो ये कह रहे हैं नसर साहब के पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से।
2: आपने बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, आप एक जहांदीदा आदमी हैं और आप मुख्तलिफ आलमी अमूर का तजिया करते हैं। मैं अब शौकत के मुंह की निकली हुई बात आपके लिए इस्तेमाल करूंगा कि आप भी पाकिस्तान के मुताबिक इंसानी हमदर्दी और इस तरह के किरदार जो पाकिस्तान ड्रामे कर रहा है
1: जी।
2: उस पर भी कभी लिखें और ठोक कर लिखें
1: जी।
2: ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, वहाँ होने वाली समाजी सियासी तब्दीलियाँ जो हैं उनसे हमारा ताल्लुक है। और अब आपने जो कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है
1: जी।
2: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, वो इसलिए कि दिखाई देता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या जरूरत है कि हमारे कमांडर इन चीफ जो कि सदर पाकिस्तान है असल में, लेकिन उनकी जगह पर ये हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जिनका काम फील्ड में होना है वो एयरपोर्ट पर जा रहे हैं किसी को लेने, किसी को खुदा हाफिज़ कहने, कभी वो सिविल सूट पहन लेते हैं और कभी ऐसे तगमे लगाए होते हैं सीने पर के मालूम नहीं कौन सी फतूहत इन्होंने की हुई। तो ये इससे अजा होता है कि इक्तदार किसके हाथ में है
1: जी। अब तो मीडिया जो है इंटरनेशनल मीडिया भी साफ कह रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तो सिर्फ नाम के वज़ीर आज़म हैं, सही जो वज़ीर आज़म हैं या जिनके पास जैसे अभी आपने कहा है कि जिनके हाथ में रियल पावर है वो तो जनरल साहब ही हैं।
2: उनके हाथ में सिर्फ रियल पावर नहीं है, कभी आपने गौर किया है कि उनके हाथ में एक छड़ी भी है
1: वही पावर जी जी हाँ वो
2: ये हमारी बदकिस्मती है
1: बिल्कुल।
2: हमने अपने जमहूरी इदारों को एक तरफ बैठाकर हम चप रास करते हुए एयरपोर्ट पर चले जाते हैं और अपनी खिदमत पेश करते हैं। क्या वजह है? चलिए आज हम बड़ा खूबसूरत दिन है, मेरा भी कुछ शादी का दर्द ठीक हो रहा है आपसे गुफ्तगू करके। मुझे ये बताइए जब से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में छोड़कारी का किरदार शुरू किया है, पाकिस्तान में वो दहशत गर्दी जो आए दिन 10-15 फौजी दहशत गर्द मारे जाते थे जिसमें 6-7 फौजी अफसरान मारे जाते थे जख्मी होते थे, वो किधर गए?
1: वो
2: बिल्कुल खामोश हो गए हैं,
1: वो रुक गई है।
2: वो बिल्कुल गोया पाकिस्तानी फौज ने अपना दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क में जो मुख्तलिफ नामों से, एक तो इन्होंने ऐसे अरबी नाम रखे हुए हैं मुकदस नाम कि वो समझ ही नहीं आती कि ये क्या हो रहा है
1: जी हैं। वो जनरल साहब जो है ना वो हाफिज कुरान है इसलिए वो अरबी नाम
2: ढूंढते हैं। कुरान होना तो अलग बात है यार, इन चीजों से हट कर आप अपने कोई नाम रखें
1: जी जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल
2: जी। और लोगों को फंसाया हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि वो सारे ग्रुप क्या वाकई ही हुकूमत ने उनको काबू कर लिया है या ये कोई सौदेबाजी?
1: जी जी जी
2: मेरी निगाह में ये सौदेबाजी है क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ऐसे लोगों की खुद ही सरपरस्ती करती है कि अब वक्त आ गया है अपनी खुदों से बाहर निकलो और फिर हम मारेंगे और मरवाएंगे का खेल खेलते हैं।
1: अच्छा
2: दूसरी तरफ आप देखते हैं
1: जी
2: कि पाकिस्तान में जो मफरूर दो मुल्ला है उनको अभी तक नहीं गिरफ्तार किया जा सका।
1: नहीं, मुल्लाओं से तो बहुत डरते हैं भाई
2: जी। और क्या वजह है कि पाकिस्तान के उलमा जो हैं, जो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट, यहूदी जमात और यहूदी ये और यहूदी वो कहकर पुकारते थे, आज उनके होंठ क्यों सिले हुए हैं? वो इकबाल को तो बहुत पढ़ते हैं, मेंबर से लेकर जिलसों तक इकबाल ही इकबाल है मुल्क में। वो इकबाल के किसी एक मिसरे की मिसाल क्यों नहीं बनते? और जाबर और कुरान के लफाज में जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक क्यों नहीं बोलते?
1: बिल्कुल,
2: ये मौलवी कितने हैं ये शादी। अब एक और वजीर आजम ने अपना एक मुल्ला भर्ती किया हुआ है जो ये कह रहा है कि ईरान जो है ये वजीर आजम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब का मुशीर है, जिसका बयान है। अच्छा। उसके अल्फाज तो कोट नहीं कर सकता लेकिन उसका मफहूम बता देता हूं।
1: वो तो नहीं है मुल्ला ताहिर अशरफी?
2: बिल्कुल वही है, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अब इस भंकू को कोई आदमी पूछे कि तू कौन होता है इस तरह की बातें करने वाला और ईरान को ये मशवरा देने वाला कि वो ट्रंप की बातें मान ले और इसराइल के सामने हाथ हाथ जोड़ दे?
1: नहीं नहीं नहीं, वो जेलमी मुल्ला साहब है, वो जो मिर्जा वो है जेलम वाले, उन्होंने ये कहा है कि इसराइल जीत गया है और हमें उसके साथ
2: वो जेलमी जो है वो तो अलग बात, वो जेलमी जहन्नमी जो है वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो मौलाना है
1: वो
2: जी जी बात की है कि ईरान अपनी हर गर्मी से और अपनी जिद से परे हट जाए
1: अहमकों वाली बात
2: और बैठकर बात करें। कौन हुकुम भाई,
1: तुम कौन होते हो?
2: अपने ये चमचे अपने माउथ पीस जो है इनको जो लाउड स्पीकर बना रखा है इन पर पाबंदी होनी चाहिए। इनको तो कामों की क्या पता नहीं कि कहाँ है, तो नहीं, कहाँ
1: दुरुस्त कहा,
2: और ये बातें करते हैं आलमी अमूर पर।
1: जी जी जी। अच्छा, ईरान के वजीर खारजा जो हैं वो अब रशिया गए हैं और रशिया ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है खुल के ये कहा है कि हम जो है ईरान की मदद करने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि ये जो पीस प्रोसेस है हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीस के लिए दो पार्टी होनी चाहिए जो एक दूसरे की बात सुने। अगर अमेरिका ईरान की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहता और जैसे अभी कहा है वो ब्लॉकेड किया हुआ है, तो ईरान जो है वो अब डट गया, वो कहता है कि जो भी हो जाए हम जो है अपनी आज़ादी का सौदा नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल आपने बिजा कहा, और ईरान का यही जज्बा जो है
1: जी जी
2: वो काबिल स्टाइश है। ये कि वो बराबरी की सतह पर मेज पर बैठकर बात करना
1: exactly,
2: ये नहीं चाहता कि वो सर झुकाए हुए जी साहब जी साहब और जेब से पर्चियां निकाल के पढ़ता रहे। उसने जो और रूस का जो रवैया है इस वक्त, और आपने देखा है कि पिछले दिनों ईरान ने जो टूर टैक्स वसूल किया है कुछ माल बरदार जहाजों से
1: जी,
2: वो उसने चाइनीज करेंसी में लिया है।
1: हाँ जी, हाँ बिल्कुल,
2: और वो चाइना के बैंकों में गया है
1: जी।
2: वो हाँ। उन्होंने डॉलर से अपना रिश्ता तोड़कर ये साबित कर दिया है कि हमारे पास मुतबादल रास्ते भी हैं, और ये रास्ते किसने मुहैया किए हैं? चीन ने।
1: बिल्कुल।
2: अब ये मामला जो है ये तो पहले ही से ये इलाकाई मसला नहीं, ये तो बहुत गंभीर मसला है जिसमें रूस और चाइना जो है वो खुलकर
1: ये खुल के जो है ना
2: ईरान ये कहता है और गलले से कहता है, डेनिश मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा कि क्यों ही अमेरिका ये मुआवजा खत्म करेगा, हम भी खत्म कर देंगे। ये तो क्यों नहीं करते?
1: अच्छा, ये ट्रंप साहब जो हैं नसर साहब, ये अब उन्होंने एक धमकी दी थी कि हम ईरान की सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, और लोगों ने उसको ये समझा कि वो एटम बम भी मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी ट्रंप साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम एटम बम कोई मारने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका कुछ पता भी नहीं है कि वो कब उनका मूड चेंज हो गए। और अभी कुछ खबरें आ रही हैं अमेरिका से कि अमेरिका के जो जनरल्स हैं जिनके पास एटॉमिक कोड्स होते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को वो कोड देने से इनकार कर दिया, और उन जनरल जो है चीफ ऑफ द स्टाफ उसको ट्रंप साहब ने उनकी छुट्टी करा दी, यहाँ तक हालत पहुँच गई हुई है।
2: ये तो आपने बिल्कुल बजा कहा, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा
1: जी,
2: अमरीकी सदर के जो इख्तियारात हैं और ये जिन कोड्स की आप बात कर रहे हैं, ये उनके लिए हासिल करना कोई मुश्किल नहीं, और इस जैसा पागल और दीवाना आदमी और जिंदगी जुनून में मुब्तला देखिए ट्रंप साहब ने जो कुछ किया है वो धमकियों की बुनियाद पर किया है।
1: जी जी बिल्कुल।
2: आप वेनेजुएला का हाल देख लीजिए जी, अभी आप फॉकलैंड की बात को भी जानते होंगे कि वहाँ क्या होने वाला है। एक तरफ अंग्रेजी इंग्लिश बादशाह जो है वो अमेरिका जा रहे हैं दौरे पर, और साथ ही उसने फॉकलैंड का मामला जो है वो शुरू कर दिया है।
1: वो अजीब और गरीब उनकी जो ना करते हैं।
2: एक और छोटा सा जजीरा है अफ्रीका में, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। तो असल बात जो है वो ये है कि हॉर्मोन्स का मुतबादल तैयार किया जाए, और इसराइल तो पहले ही नक्शे बना चुका है कि किस तरह एक नई नहर इस इलाके में यूं बनाई जाए कि स्वेज के नाम यानी नहर स्वेज जो है वो और हॉर्मोन्स इनका असर रसूख खत्म हो जाए।
1: और इमारात वाले जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो इसराइल बनाना चाहता है ना वो कनाल, उसमें इमारात वाले जो है ना वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
2: सऊदी अरब ने तो पहले से कह दिया हुआ है कि इसके तकरीबन 2/3 अखराजात जो है वो बर्बाद
1: करेंगे। जी हाँ बिल्कुल।
2: तो इससे आप अंदाजा लगा रहे कि इन मुनाफिकों की मुनाफिकत की इंतहा क्या है। ये एक तरफ कहते हैं जी इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी फिलिस्तीन को रियासत कायम होगी तो फिर हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, और तुम तो इसराइल की गोद में बैठे हुए
1: पहले पहले से उसकी बातें सुन रहे हो। जी जी बिल्कुल। अच्छा नसर भाई, अभी थोड़ा सा डेनिश खबरों पर भी बात कर लें। आपने जो है दो तीन आर्टिकल ज़बरदस्त लिखे हैं, और मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ। ये जो लॉ जिसको कहते हैं कुरान लॉ, उसको ख़त्म करने का जो मुतालबा अभी कुछ पार्टियों ने किया है, और उसमें जो पहले वाली जो सबका पार्टियाँ जो इत्तेहाद में थी कि इसकी मजामत की जाए, अब वो जो है ऐसे लग रहा है कि ये जो आज़ादी राय और मुसलमान ममालिक के प्रेशर की वजह से वो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी नहीं चाहती, लेकिन ये उस लॉ को ख़त्म करना चाहते हैं। इसको वो कुरान लॉ क्यों कहते हैं, हालांकि ये कुरान के बारे में तो है ही नहीं है।
2: देखिए ये गलतुल आम है इसलिए कि अब ये आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ गया है, और अगर आप जैसा कि अफसोस बेशतर आप करते हैं
1: जी
2: इस कुरानिक लॉ लफ्ज़ का तजिया करें तो इसके पीछे डेंचू की वो मुनाफिकाना और नफरत अमेज रवैया सामने आ जाता है जो वो ये मुसलमानों के लिए रखते हैं। क्योंकि जब ये कुरान लॉ कहकर अपने लोगों से बात करते हैं तो उनको ये तासर देना चाहते हैं कि देखो हमने मुसलमानों ने हम पर क्या किया और हमें क्या करना पड़ा।
1: तो लेकिन वो उस लॉ को पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो लॉ जो है वो सारी मजहबी किताबों के बारे में है।
2: वो बिल्कुल आपने बजा कहा, वो तो ऐसा एक कानून है कि जिसने किसी तफरीक के बगैर तमाम मजहब अदियान और मुकदसात जो हैं लोगों की, वो यहूदी हो, ईसाई हो, निसरानी हो, मुसलमान हो, जरदश्त हो, कोई भी हो, बुद्ध हो, हिंदू हो, वो सबको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन जिस तरह से उसको पेश किया गया है सियासतदानों की तरफ से ये सरासर गलत तरीका था। और फिर अब ये कहा जाता है कि जब हमारे पास इस तरह के नस्ली तशब और आज़ादी इजहार पर कदम लगाने के खिलाफ बोलने वालों के लिए पहले से कानून मौजूद है तो इस नए कानून की क्या जरूरत थी, और ये इसलिए बनाया गया कि मुसलमान ममालिक ने और ख़ासतौर पर इस्लामी ममालिक की तंजीम ने जोर दिया था। ये बात भी गलत है। ये जोर दिया गया था, लेकिन आपको ये भी याद है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म वेंचर पार्टी के अनस को वासमुसन ने तो डेनमार्क में रहने वाले मुसलमान अम्बेसडरों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया।
1: एग्जैक्टली, जब वो प्रॉब्लम शुरू हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, वो कार्टून का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ
2: तो फिर हम कैसे कह सकते थे आपने हमारा दबाव के तहत ये काम किया। हमारे दबाव के तहत आपने काम नहीं किया, अपनी जरूरत के तहत आपने ये काम किया।
1: एग्जैक्टली। अच्छा ये जो कानून है इसमें मजहबी किताबों को जलाना या उन पर पाँव रखना या उन्हें गंदा करके या फाड़ना और उस जो है अवामी जगह पे खड़े होकर उनके खिलाफ प्रोपोगंडा करना और उस पे जुर्माना भी है 2 साल तक, तो ये है वो कानून।
2: बिल्कुल बजा कहा आपने, और ये एक ऐसा इकदार पसंदाना और मुनसफाना कानून है।
1: बिल्कुल।
2: और जैसा आपने जिक्र किया कि उस वक्त जो पार्टियां इसके खिलाफ थी
1: जी
2: पार्लियामेंट में, अब वो इसकी हमायत कर रही हैं।
1: اور خاص طور پہ ایس ایف جو ہے, جی ہاں
3: خاص طور پر ایس ایف جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی,
1: جی جی جی,
3: پر رویہ کتنا سخت,
1: مجھے اچھی طرح یاد ہے, بالکل اچھی طرح یاد ہے.
3: اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایس ایف ان ہز لسٹ میں اور اس طرح کی بائیں بازو کی جو پارٹیاں ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں آواز اٹھائیں گی, لیکن نہیں
1: نہیں نہیں, وہ اینٹی اینٹی مذہب ہے نا وہ تو ویسے,
3: لیکن اب اب ایس ایف بھی کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس قانون کو نہیں چھوڑا جائے, چھیڑا جائے گا اور یہ منوان جو کا تو رہے گا.
1: بالکل بالکل. تو
3: دوسری طرف ایک اور بھی بات ہے,
1: جی
3: ابھی یہ بات جو ہے یہ پھیل رہی ہے اور خاص طور پر ڈینش پیپلز پارٹی اور نیو بولی پارٹی جو ہے سٹیزن پارٹی,
1: جی
3: وہ اس پر بڑا زور دے رہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہم کروا کے رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے جو مسلمان علماء ہیں یہاں پر اور مسلمانوں کی جو تنظیمات ہیں ان کو بھی کان کھول کر رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اور خاص طور پر پارلیمنٹ سے متعلقہ لوگ جو ہیں یعنی ممبران پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیاں وہ کیا رائے رکھتی ہیں اور کس طرح سے اپنے اپنے پروپیگنڈے کو ہوا دے رہی ہیں.
1: تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈینمارک جو ہے ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف تو جو ہے وہ داخلی پولیٹیکل پریشر ہے, لیکن ساتھ میں جو ہے باہر سے بھی پریشر ہے, کنونشن کا پریشر ہے, دوسرے ممالک کا میڈیا کا پریشر ہے, تو اس میں
3: لیکن اس کے ساتھ یہ چیز یاد رکھیے,
1: جی جی,
3: کہ ڈینمارک میں کچھ ایسے بھی سیاستدان ہیں جو الگانیہ کہتے ہیں, بلکہ وزیر اعظم نے بھی ایک دو مرتبہ اشارتاً بھی اور ایک دو مرتبہ کھل کر بھی یہ بات کی ہے کہ ایسے کنونشن سے پر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے جو ہمیں ہمارے قانون سازی میں رکاوٹ بنتے ہیں.
1: درست.
3: ایک دو دائیں بازو کی پارٹیاں جو ہیں وہ تو کھل کر یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے کنونشن سے ڈینمارک کو باہر نکل جانا چاہیے.
1: اور اسی کو اگر میں لے کے آگے بڑھوں تو آپ نے ایک اور آرٹیکل جو آپ نے لکھا تھا اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈینمارک جو ہے وہ یورپین سخت پالیسیز کے لیے ایک ماڈل بن گیا ہے.
3: بالکل درست. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈینمارک سے لے کر اٹلی تک, اٹلی سے پرتگال تک اور بلغاریا اور کئی پرانے کمیونسٹ ممالک جو ہیں وہاں اور سویڈن اور خاص طور پر ناروے, جی اور یوکرین کا یہ ذکر نہیں کرتے جس پر جو سب سے زیادہ انتہائی متعصبانہ پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اسی پارٹی نے روسی زبان کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی.
1: جی ہاں, اور وہاں پہ نیو نازیز پارٹیاں بھی ہیں وہاں پہ, ہاں.
3: اور یہاں ڈینمارک سے نوجوان جو ہیں ان کے کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. جی تو ڈینمارک جو ہے, اچھا ناروے کو یہ بڑا فخر ہے اور ڈینمارک بڑا فخر ہے کہ اس کی جو ڈینش پیپلز پارٹی تھی اور اس سے پہلے جو اس کی ماں ڈینش پیپلز پارٹی کی ماں فرنکرس پارٹی جو تھی, انہوں نے بیدار کیا ہے اپنے لوگوں کو نہ صرف ڈینمارک کے اندر بلکہ یورپ بھر کو کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ایک طرح سے سرنگ لگا کر ہمارے ملکوں میں داخل ہو رہے ہیں.
1: جی ہاں بالکل, اور یہ تو ہمارے جو اس کا وزیر انٹیگریشن ہے اب یہ
3: دیکھیے, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈینمارک میں مسجد بنانے کی اجازت ہے, پانچ وقت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں جا کر اور آپ اپنے بودھو باش میں رہ سکتے ہیں, جیسا لباس چاہیں پہن سکتے ہیں, تو یہ باتیں اپنی جگہ پر. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہندو میں سجدے کی اجازت, نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہاں ان کی یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ پر, لیکن ان کو اپنے سیاسی اور اپنے مذہبی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون سیاستدان کیا کہہ رہا ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ ہمارے حق میں ہے اور ہمارے خلاف ہے.
1: اچھا میں نے بات کی تھی ابھی ایک اور جو ہے ڈسکشن چلی ہوئی تھی الیکشن کے دوران کہ غیر ملکیوں میں خاص طور پہ مسلمان یوتھ جو ہیں ان میں کرمنالٹی بڑی بڑھ گئی ہے, ان میں وہ جیل میں بہت زیادہ ہیں اور وہ جو ہے انٹیگریٹ نہیں ہونا چاہتے, تو ایسٹ سوائے جو ہے جہاں پہ کافی 19-20% پاپولیشن جو ہے وہ غیر ملکیوں کی ہے, تو ان کی میئر نے کہا کہ یہ جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں اس میں کوئی درستی بھی نہیں ہے, اس میں یہ اگر چند نوجوان جو مسلمان ہیں وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں تو میجورٹی تو یہ کام نہیں کرتی, तो उनका जो अच्छा बयान था उस पर भी इंटीग्रेशन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं तुम नहीं समझती, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये मुसलमान जो है इनका क्राइम करना जो है ये कल्चरल चीज़ है। अब वो जो मेयर है अंदाजा लगाएं वो वहाँ रहता भी नहीं है, जो मेयर है वहाँ उस इलाके की वो कुछ कह रही हैं और वो अपनी टांग अड़ा रहा कहते नहीं नहीं नहीं तुम ठीक नहीं कह रही है।
3: तो बाकी साहब इच्छा है कि मेयर ने जो बात की है आप शायद भूल जाते होंगे, ये बात तो आप पिछले 20-25-23 साल से कर रहे हैं
1: जी,
3: कि एक आदमी को अगर कोई वो दानिश्ता या गैर दानिश्ता तौर पर किसी तरह मुजुर्माना सरगर्मी में पाया जाता है, सजा पाता है, तो आप उसका दंड सब पे गिरा देते हैं, ये सरासर नाइंसाफी है
1: जी।
3: और मेरे ख्याल में इस आय की जो मेयर है उन्होंने ये बात कहकर कम अज कम एक झटका दैनिक सियासत में जरूर पैदा किया है कि कुछ होश के नाखन लोग तुम मुख्तलिफ बरादरियों को निशाना बनाकर लगाकर फिर नफरत फैलाने का ये जो अमल तुमने शुरू कर रखा है मुआशरे में समाज में इससे इज्तनाब करो
1: जी। तो बिल्कुल
3: ना डनमार्क के हक में है न किसी तारकिन वतन बरादरी के हक में है बल्कि ये डनमार्क की बदनामी का बाश बन रहा है। और ये बात जो है ये हमें खुद नोट रखनी चाहिए। और देखिए उन्होंने जिस तरह से ये बयान हमारे हक में दिया है और उस पर ये इंटीग्रेशन ने जिस तरह से मकाना जवाब दिया है जी उससे भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि हुकूमती इदारों में खासतौर पर सोशल डेमोक्रेट पार्टी
1: जी बिल्कुल
3: जिसके हमारे कई पाकिस्तानी जो हैं वो उसके मेंबर हैं और कई एक ने तो उसके प्लेटफॉर्म से हालिया इंतखाबात में हिस्सा भी लिया है बल्दियात में भी और गालवन पार्लियामेंट के इंतखाबात में भी, अलग बात है वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन उन सोशल डेमोक्रेट पार्टी के तारकिन वतन और खासतौर पर पाकिस्तानी अरकान से ये पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारी पार्टी ये क्या कह रही है।
1: एग्जैक्टली हम ये तो सारी पार्टियों से पूछना चाहिए कि तुम्हारी
3: ये देखिए
1: पॉलिसीज क्या है।
3: ये पकौड़ों की जो सियासी पार्टियां होती हैं ये पकौड़े खाओ समोसे खाओ और चाय पियो और घर जाओ इनमें कितना वक्त जाया किया जाता है और वहां पर बैठकर क्या बातें की जाती हैं। पाकिस्तान की मैं भी पाकिस्तान का पार्टी का मैं यहाँ सदर बन गया हूँ मैं यहाँ सेक्रेटरी जनरल बन गया हूँ इनसे हटकर जरा वहां पर डैनिश सियासत पर बात करें और डैनिश मीडिया को साथ रखें
1: जी। अच्छा डेनिश शासक के तवसत से क्या कहेंगे आप कि अभी तक हुकूमत नहीं बन रही और हमारी जो अभी जो वज़ीर आज़म तो नहीं है वो लेकिन वो कह रही हैं मुइज़ फेडरेशन वो कह रही हैं कि अभी कोई हम डेडलाइन नहीं दे सकते कि हुकूमत कब बनेगी, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा।
3: देखिए पिछली बार तो आपको याद है कि मेरे ख्याल में 3-4 महीने लग गए थे हुकूमत
1: जी हाँ लास्ट टाइम हाँ जी हाँ
3: और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस तराजू का जो भारी पलड़ा है वो लास्ट वीक राजमोशन के पास है।
1: हाँ, उन्होंने तो धमकी भी दी है कि मैं भी जाकर जा सकता हूँ बादशाह सलामत के पास
3: और वो अपनी धमकी पर अगले हफ्ते कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है इस दौरान जैसा कि मुबस्सरीन कहते हैं वो कुछ न कुछ नतीजा जरूर बाहर निकालेंगे। बिल्ली थैले से बाहर निकलने की तैयारी कर चुकी है और देखिए वो खुद अगरचे इसका इजहार नहीं करते कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं लेकिन कौन है जो वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं लेना चाहता।
1: और वो वज़ीर आज़म रहे हैं पहले
3: और वो वज़ीर आज़म रहे हैं टोक कर वज़ीर आज़म रहे हैं उन्होंने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान ऐसे ऐसे कारनामे आलमी सतह पर और यूरोपीय यूनियन में अंजाम दिए हैं कि खुद डेनमार्क जो है वो इसका एतराफ़ करता है।
1: बहुत तजर्बाकार है वो जी
3: कायम मुकाम वज़ारत हुकूमत जो है कायम मुकाम इसके लिए बेहतरीन पंजाबी लफ्ज होता है डंग चढ़ाऊ।
1: अच्छा
3: डंग चढ़ाऊ हुकूमत जो है उसमें वो वज़ीर ख़ारजा हैं और इससे पहले वो हुकूमत ही वज़ीर ख़ारजा थे और उन्होंने जिस तरह से ग्रीनलैंड के और यूक्रेन के मामले को पेश किया है और इस पर डेनमार्क के मौक़ों पर डटे रहे हैं वो भी काबिल स्टाइश है। लेकिन अब देखना यह है कि दाएँ बाजू की पार्टियाँ क्योंकि दो पार्टियाँ जो हैं उनके मुतल शकों को शुबात पाए जा रहे हैं और लास्ट के रास्ते से नहीं चाहते कि वो और उनमें से खासकर एक पार्टी जो है वो इकतदार में शामिल की जाए जबकि मेटर फ्रेडिक्सन जो है वो इस बात पर अभी अब मादा होती दिखाई नहीं देती लेकिन लचक का इजहार उनके लहजे में पाया जाना शुरू हो गया।
1: तो क्या आप ये समझते हैं कि कोई बड़ी पार्टी जो है वो इन नस्ल पसंद नस्ली तासुब वाली पार्टियों के साथ काम नहीं करना चाहती है? तो ये तो अच्छी बात है।
3: ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी बात है। और आपको पता है स्वीडन ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश की थी जी। उन्होंने तो वहाँ की जो दाएं बाजू की सबसे ज्यादा 23 सीटें लेकर आई थी, जिसके वो दो पार्टियां मिलकर हुकूमत बना सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे।
1: उनका बायकॉट किया था उन्होंने,
3: और उनका उन्होंने बाकायदा बायकॉट किया।
1: जी जी बिल्कुल।
3: चीज अगर यहाँ डेनमार्क में हो जाए तो फिर डेनमार्क का वो रवायती इंसान परस्त और इंसान दोस्ती का मायार एक बार फिर कायम हो जाएगा, जिसके लिए डेनमार्क पूरे आलम में पूरी दुनिया में जाना जाता था और अपनी एक शिनाख्त रखता था।
1: अच्छा, एक आखिर में एक छोटी सी खबर पे मैं आपका तबसरा लूंगा, वो ये है कि पिछले हफ्ते दो ट्रेन जो हैं वो नॉर्थ ईलैंड में उनका तसादम हुआ, वो एक दूसरे में डायरेक्टली आके जो है ना वो उनका वो लग गई। और वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उस इलाके में, वो कहते हैं कि हमने कई दफ़ा देखा है कि कई दफ़ा ट्रेन जो है वो रेड लाइट जो है उसको भी तोड़ के निकल जाती हैं। तो ये तो बड़े दुख वाली बात है कि एक इतने इम्पॉर्टेंट जो इलाका है जहाँ पे बहुत लोग जो है सफ़र करते हैं लोकल ट्रेन वगैरह से, वहाँ पे रेड लाइट को भी उन्होंने तोड़ के जो है वो गुजर जाते हैं कई दफ़ा।
3: देखिए, ये एक बड़ा दुख थे और बड़ा नफसियाती तौर पर मुतासर करने वाला हादसा था।
1: जी जी बिल्कुल।
3: और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ऐसी शिकायत भी सामने आई हैं कि महकमा रेल के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देते। लेकिन अभी हाल ही में यानी कल शाम तक जो एक इंकशाफ हुआ है,
1: अच्छा,
3: उसने सबको हैरान कर दिया है।
1: वो क्या है?
3: वो ये है कि इस तरह इलाकाई छोटी गाड़ियां चलने वाली ये चलती हैं, उनमें एक ऐसा निजाम होता है कि अगर दो गाड़ियां एक दूसरे के सामने आ जाएं तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करके ड्राइवर को मतलब कर देता है कि आगे गाड़ी आ रही है, यहीं रुक जाओ।
1: और ब्रेक भी लगा ऑटोमेटिक ब्रेक भी है
3: और वो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं
1: जी।
3: लेकिन इन गाड़ियों में वो सिस्टम लगाया ही नहीं गया, जबकि तीन मरतबा इसके लिए इनको रिकमेंड किया गया था कि ये जल्दी से जल्दी आप लगवाएं। अब इसके लिए डेनमार्क का जो तहकीकती कमीशन होता है वो तफ्तीश कर रहा है कि हादसे की असल वजह क्या थी और ये सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अभी तक क्यों नहीं लगवाया गया था। तो अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या आता है। लेकिन इसके लिए जैसा कि बताया जा रहा है अभी हो सकता है एक महीने दो महीने डेढ़ महीना लग जाए।
1: वही ये कह रहे हैं कि टाइम लगता है तफ्तीश करते करते। अच्छा,
3: तो ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी दुख पे हैं और खुदा का शुक्र है कि वहाँ पर कोई अमवात नहीं हुई।
1: हाँ जी, ये जख्मी हुए लोग काफी, लेकिन
3: जरूर हुए हैं।
1: हाँ जी, मौत नहीं हुई,
3: कोई मौत नहीं हुई।
1: चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है,
3: खुशहाली बात है हमारे लिए।
1: ठीक है।
3: और बाकी चीजें जो हैं, बशीर साहब आपका सारा प्रोग्राम मैं आपके साथ शामिल होता हूँ, अपनी बसात के मुताबिक जो कुछ होता है वो कह देता हूँ। बाकी जो बातें नहीं कह सकता मैं अपनी वेबसाइट पर उर्दू अमृतसर डॉट डी को।
1: आपकी हर बात नसर भाई मैं बता दूं, आपकी हर बात जो है वो दिल में जाती है और लोग सुनते हैं उसको।
3: लेकिन बड़े दुख के साथ ये बात कहूँगा कि खुद हमारे अपने वतन अजीज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अंदरून मुल्क तो माशाल्लाह हमने सुरखाब का पर बांध लिया है।
1: जी जी।
3: लेकिन अपने अंदर जिस तरह हम अपने हकूक इंसानी को पांव तले गोंद रहे हैं, लोगों को जेलों में डालकर अदालतों में पेश नहीं किया जाता, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके इलाज मुआवजे के लिए 70 साल की फौजी को जेलों में रखा हुआ है।
1: ये इस पे बहुत काम होना चाहिए।
3: और चादर और चारदीवारी का जो तहफ़ मरियम नवाज शरीफ साहब पेश करती हैं, अभी बाहर निकल के रात को गली में बुरका पहनकर ये दुपट्टा लेकर मुंह डाम कर जरा देखे कि गलियों में क्या होता है, लाहौर की गलियों में।
1: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने।
3: जाए ना किसी झोपड़ी वालों के झोंपड़ों में, देखे कि वहाँ पर चूरू में आग जल रही है या क्या हो रहा है।
1: Exactly, हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत फर्क है एक हमारी जो अलीट है उसकी जिंदगी में और आवाम की जिंदगी में, बहुत बड़ा फर्क है।
3: अपनी दुर्रा बरदार जो पुलिस है उसका रवैया तो देखे, पुलिस को तो ठीक करें।
1: बिल्कुल,
3: हर जगह पर रिश्वत रिश्वत रिश्वत। और फिर पुलिस की सिपाही जो है, आपने देखा होगा कई यूट्यूबर जो है उन्होंने सबूत मुहैया किए हैं कि पुलिस अपनी मोटर बाइक्स पर शराब बेच रही है।
1: जी बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं कि हम एक खास प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उस पे बात करें, हुकूमत क्या कर रही है और हमें हम जो है उसके क्या राय दे सकते हैं यहाँ पर।
3: आपकी बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे वतन अजीज को अपनी रहमतों से नवाजे
1: बिल्कुल,
3: और हमें ऐसे लोगों से हमारे छुटकारा दिलवाए जो अपने आप को तो पहचानते हैं लेकिन दूसरे को नहीं पहचानते।
1: बहुत खूब, और इन खूबसूरत अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। रज़ा भाई, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने नसर भाई को और शौकत साहब को जो है वो जो है जहमत दी, और दोनों भाइयों ने मेरी टांगें खींची कि जी मैं जो है इंसानी हकूक़ की बात तो करता हूँ लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं करता। लेकिन ये दुरुस्त है, दोनों दुरुस्त कह रहे हैं बिल्कुल। उस पर हम जो है अगले हफ्ते उस पर डिटेल से बात करेंगे। तो सामईन और नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और अगर आपके पास कोई सवाल हो या अगर कोई ऐसा मौजू हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम अपने रेडियो प्रोग्राम में बात करें तो आप हमारे रेडियो प्रोग्राम पे ईमेल भी कर सकते हैं, टेलीफोन करके बता सकते हैं। ये रज़ा भाई जो है ना आपको सारी मालूमात देंगी। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
4: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई।